0: जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
1: ओह माय।

0: रेत वाली, तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस,
2: राइट,
1: मैं दुनिया

0: संस्थेला नक्की भेट द्या. स्नेहालय एफ ब्लॉक श्री टाइल्स चौक न्यू अमोनिया प्लांट शेजारी MIDC अहमदनगर.
1: कोने में तो बैठा जब मुझे वो दिखी थी वो सबसे अलग थी वो सबसे हंसी आंखें मेरी फिर उसकी आंखों से जमली एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास ते मेनू नी पता सी गिलास च की बट हौली हौली लक नु घुमा के नचदे लगे सो सेक्सी.

अंतग्रह सूत्र है ना, पर्युषण पर्व है। और पर्युषण पर्व यानी जैन धर्म का ही नहीं पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ त्योहार। पर्व यानी क्या? फेस्टिवल। पर्व यानी क्या? पर्युषण पर्व। पर्व यानी उत्सव। पर्व यानी फेस्टिवल। पर्युषण ये शब्द है ना, अपन प्रदूषण के वहां प्रदूषण का मूल शब्द क्या? पर्युषण। पर्युषण का मीनिंग क्या होता है? परि यानी सब तरफ से स्वयं को मोटिवेट करना, उत्सव के लिए मोटिवेट करना, आत्मा को जागृत करना। धन्यवाद सर। हाँ करोगे? हाँ अंतर के ना शेवटी के अतर हो इसके पीछे ये ऐसा है। वन डे का पर्व शुरुआत में कितना था? वन डे। वन डे यानी संवत्सरी। संवत्सरी यानी भाद्रपद शुक्ला पंचमी। बोलो भाद्रपद शुक्ला पंचमी। भाद्रपद यानी श्रावण मास के बाद जो पर्व महीना आता है मराठी का, उसको क्या कहते हैं? भाद्रपद। शुक्ल यानी उजला पक्ष है, जिस समय चांद बढ़ते जाता है उसको, और उस दिन संवत्सरी। संवत्सरी यानी संवत्सर यानी साल। संवत्सर यानी साल। संवत्सरी यानी साल का नया दिन। जैसे तुम्हारा 1 जनवरी आप मनाते या गुड़ी पड़वा मनाते, तो अपने धर्म का न्यू ईयर कौन सा है? संवत्सरी अपना न्यू ईयर है। अपना साल कहाँ से शुरू होता है? संवत्सर से शुरू होता है। तो ये संवत्सरी का जो पर्व है, ये तीर्थंकर परमात्मा भी मनाते थे, और साधु साध्वी के लिए और सभी के लिए पर्व मनाना कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है? इसके पीछे क्या प्रयोजन है? कि साल भर में हम लोग जो भी करते हैं, 19-20 है ना, कम ज्यादा, तो सबका क्या करना? ऑडिट करना होता है। ऑडिट कर करके कहाँ गलती हुई, क्या हुई, देख करके उसको न्यू ईयर तैयार करना। साल भर में किन के साथ अपना मन मुटा हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, तो उसको मिटाना होता है। धीरे धीरे अपने पूर्वजों ने देखा कि एक दिन में इसकी तैयारी हो सकती नहीं है, तो फिर उन्होंने 8 दिन का शुरू किया। तो भादवावधि 13 से इसकी शुरुआत हो गई 8 दिन का। 8 दिन में एक आगम की आराधना होती है, उस आगम का नाम है अंतगण सूत्र। बोलो क्या नाम है उसका? पूरा नाम उसका है अंतकृत दशांग सूत्र। बोलो अंतकृत दशांग सूत्र। अंत यानी एंड, अंत यानी एंड, कृत यानी जिन्होंने एंड किया। तो एंड करते समय उनके क्या स्थिति बनी और किसका एंड किया उन्होंने? अपने जीवन के सारे पापों का एंड किया। जितने कर्म है ना, जिसके कारण से अपन जन्म मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। अभी आप भी कैसे आए, मैं भी कैसे आया, वापस यहां से मरेंगे, कहीं जन्मेंगे, फिर जन्मेंगे, फिर मरेंगे। तो इस जन्म मरण के चक्कर से जिन्होंने बाहर निकल करके जो मोक्ष में पहुंचे, कब मोक्ष में पहुंचे? दो प्रकार के होते हैं। कई लोगों को केवल ज्ञान पहले हो जाता है, और इसमें जो वर्णन है उन लोगों का है जिनको आखिरी समय में केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान होते ही वो मोक्ष में पहुंचे। ऐसे 90 पुरुषों का चरित्र है। कितने? 90 पुरुष नहीं है, 90 आत्माएं। उसमें बेने भी हैं और भाई भी, दोनों हैं, मेल भी हैं और फीमेल भी हैं। इनका 90 का वर्णन अपने को इस 8 दिन में समझना है। जैसे ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ को वेद कहते हैं ना, मुसलमानों के धर्म ग्रंथ को कुरान कहते हैं, क्रिश्चियनों के धर्म ग्रंथ को बाइबल कहते हैं, वैसे जैनियों के धर्म ग्रंथ को क्या कहते हैं? आगम। क्या कहते हैं? आगम। क्या कहते हैं? आगम। आगम का
आगम किसको कहते हैं? तो जो तीर्थंकर परमात्मा ने, तीर्थंकर महावीर ने जो उपदेश दिया, जो प्रवचन दिया, जो गाइडेंस दिया, जो सीक्रेट ओपन किया, वो सीक्रेट जैसा उन्होंने ओपन किया तो उनके जो प्रमुख शिष्य थे, 11, कितने शिष्य थे प्रमुख? भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य कितने थे? 11। वो 11 को क्या कहते हैं? गंधर्व। क्या कहते हैं? सबसे बड़े शिष्य कौन थे? इंद्रभूति। सबसे बड़े शिष्य कौन थे? और सबसे छोटे शिष्य कौन थे? प्रभास। क्या नाम था? प्रभास। इंद्रभूति, प्रभास। प्रभास की उम्र थी 16 साल की। कितनी थी? छोटे गंधर्व थे, सबसे छोटे गंधर्व थे, उनका नाम प्रभास, और उनकी उम्र 16 साल की। और 16 साल की उम्र में उनके पास 300 से 250 शिष्य थे, 16 साल की उम्र में। कितने? 16 साल की उम्र में उनके पास 250-300 शिष्य थे। इंद्रभूति गौतम की उम्र थी जिस समय भगवान महावीर के पास आए उस समय 50 साल की, है ना? और पांचवे गंधर्व थे सुधर्मा स्वामी। क्या नाम था? क्या नाम था? सुधर्मा स्वामी भगवान महावीर के उत्तराधिकारी, यानी उनके बाद उनके पट्टे पर आए, उनको क्या कहते हैं? सुधर्मा स्वामी। अभी जो आगम अपने पास है वो किनका है? सुधर्मा स्वामी ने दिया हुआ है। जानकारी ध्यान में रहेगी क्या आपके? जानकारी ध्यान में रहेगी क्या आपके? इसमें से आधी जानकारी आपके पेरेंट्स को भी पता नहीं है। यदि जाकर के पूछोगे ना उनको कि भगवान महावीर के सबसे छोटे गंधर्व का नाम क्या है, तो मोस्टली उनको नाम भी पता नहीं होगा। और कितनी उम्र है पूछा ना आपने, तो कहेंगे फालतू सवाल मत पूछ, है ना? कितनी उम्र थी उनके? 16 साल के। नाम क्या था? प्रभास। पांचवे गंधर्व कौन थे? सुधर्मा स्वामी। पहले गंधर्व कौन थे? इंद्रभूति गौतम। पांचवे गंधर्व सुधर्मा स्वामी, पहले गंधर्व, आखिरी गंधर्व, उम्र उनके भगवान महावीर की गोत्री आदि लाने का काम कौन करते थे? सुधर्मा स्वामी। कौन करते थे? सुधर्मा स्वामी। और भगवान महावीर के पास कंटिन्यू जो रहते थे वो सुधर्मा स्वामी, जो जो भी भगवान महावीर ने कहा सारा उन्होंने नो राइटिंग। कैसी बुद्धि रही होगी उनकी, है ना? कैसी बुद्धि रही होगी कि जो जो भगवान महावीर ने बोला 30 साल में, कितने साल में? 30 साल। केवल ज्ञान होने के बाद भगवान महावीर कब तक बोलते रहे? 30 साल तक। 30 साल तक भगवान महावीर जो जो बोले, जिसके साथ बोले, किसी ने आकर कोई क्वेश्चन पूछा उसका भगवान महावीर ने कोई उत्तर दिया, रिकॉर्ड। किसी ने उत्तर पर वापस क्वेश्चन पूछा, रिकॉर्ड। ऐसी कैसी बुद्धि होगी, कल्पना करो कि जो सुना वो याद हो गया, जो सुना वो याद हो गया, और वो जो उनको कंठस्थ हुआ, जो याद हुआ, उसके आधार पर जो उन्होंने शास्त्र की रचना करी उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आगम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? भगवान महावीर ने जो बोला और सुधर्मा स्वामी ने जो शब्द रूप में निबद्ध किया उसको कहते हैं आगम। इसका मूल बोलने वाला कौन? पाणिनि प्यूनाट है हमारा। मूल बोलने वाला कौन है? भगवान महावीर, है ना? रचने वाले कौन है? सुधर्मा स्वामी, है ना? तो 8 दिन में हम लोग इस आगम की आराधना करेंगे, है ना? जिसमें 90 सिद्ध आत्माओं की जीवन चरित्र है। कितने? 90 समझते हो ना? 90 मीन्स 90। हाँ चलो, अच्छा अच्छा अच्छा बस, है ना? 90, है ना? 90 में शुरुआत में जो वर्णन आता है वो आता है श्री कृष्ण के समय का। किनके समय का?
श्री कृष्ण के समय में कौन कौन मोक्ष में गए? बहुत सारे मोक्ष में गए, लेकिन जिनको आखिरी पल में केवल ज्ञान हुआ, आखिरी पल में केवल ज्ञान हुआ, उनका वर्णन चलता है। तो मैं पहले शास्त्र का मूल पाठ बोलता हूं, आप बिल्कुल आंख बंद कर करके ऐसा महसूस करना कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी आप पर बरस रही है और उसको आप सुन रहे, प्ले करेंगे, हो जाएगा। यदि आपको पढ़ते आएगा ना, दिख रहा है उसमें, तो यदि आप पढ़ सकते हो तो मेरे साथ आप बोल भी सकते हो, है ना। पहले हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम की मुद्रा में आएंगे और बोलेंगे मेरे पीछे, इच्छा करेनम संदेश भगवम पजस्ना कपस अरहनाये वोटिवोमि अंतगण दशांग सुयदेवस अरहनाये वोटिवोमि हुज में अरहना जहां सुतम जहां निर्देशम जहां विहीम तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। हिंदी का मीनिंग है उसका, वो तीर्थंकर परमात्मा हम परुष्णा कल्प की एवं अंतगण श्रुत की आराधना के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं। हमारी अंतगण श्रुत की आराधना यथा विधि से हो, यथा सूत्र हो, यथा आपके निर्देश के अनुसार संपन्न हो। नमो सूर्यदेवयाये, नमो सूर्यदेवयाये, नमो सूर्यदेवयाये। दिखता है आपको, पढ़ सकेंगे आप लोग वहां से, है ना। तो मैं धीरे धीरे बोलता हूँ फिर, है ना, तो आप मेरे साथ में बोल सकते हो उधर देखते हुए। तेनम कालेनम तेनम समयेनम, कहाँ से शुरू कर रही है? नहीं, हाँ ने उसके पहले का है ना, चंपा नामम नहरी होता, सुबह ऐसे ही लगाया था क्या? सुबह कैसे कैसे के लगाया था? यहां से शुरुआत करी थी क्या? ये उल्टा सुलटा हो गया है।

0: चलो पहले का ले ले, जो पहले था वो ले ले। हाँ? कहाँ से ले आए तुम लोगों ने?
1: जो
0: नहीं, इसके पहले नहीं, इसके पहले और एक पार्ट है। नहीं, ये पहला पार्ट। तेनम कालेनम तेनम समयनम चंपा नाम नारी होता तत्तनम चंपा नारी उत्तर उत्तर तत्तनम पुनर्वधि नाम चाहिए होता। यहाँ ही नहीं इसमें ना। वो गलत है ना? कहाँ से लिया पीडीएफ? अच्छा, तो लास्ट पोजीशन में गलत गया होगा ना। चलो अब यहां से शुरू कर दे, दूसरे से। हाँ, दूसरे नंबर से पढ़ना शुरू करेंगे ना। मैं पहला पैराग्राफ पढ़ लेता हूं, जो वहां पर नहीं है वो सुन लीजिए। तेनम कालेनम तेनम समयनम चंपा नामम नैरी होता वर्णवो तथनम चंपाए नैरी उत्तर पुरीथि में दिशि भाये एथनम पुनबद्धे नामम चये होता वनखंडे वर्णवो तेसेनम चंपाए नैरी कोनीय नामम राया होता मह्या हेमंत वर्णवो। अब आपको आगे जो दो नंबर का सूत्र है ना, ऊपर और सामने देखो, दो नंबर का है ना, वहां से आप मेरे साथ बोलेंगे। तेनम कालेनम तेनम समयनम अज सो में थेरे जाओ पंच हिम अनगार सहे हिम सद्धि संपरि उड़े पुवानो पुविम चरमाने गामानो गामम द्विजमाने सुहम सुहेनम विहरमाने जेने व चंपा नैरि जेने व पुन्न भद्दे चये तेने व समो सरिये परिसा निगया जाओ परिसा पड़े गया। तेनम कालेनम तेनम समयनम अज सोमस अज जंबु जाओ पजुआस माने एवं वयासी जैनम भन्ते समनेनम भगवया महावीरेनम अये गरेनम जाओ संपत्तेनम सत्तमस अंगस वसंग दसानम अयम अठे पन्नते अठमस नम भन्ते अंगस अंतगर दसानम समनेनम जाओ संपत्तेनम के अठे पन्नते एवं खलु जंबु समनेनम जाओ संपत्तेनम अठमस अंगस अंतगर दसानम अठ वग्गा पन्नता चैनम भन्ते समनेनम जाओ संपत्तेनम अठमस अंगस अंतगर दसानम अठ वग्गा पन्नता पणमस नम भन्ते वग्गस अंतगर दसानम समनेनम जाओ संपत्तेनम कई अज्ञेना पन्नता एवं खलु जंबु समनेनम जाओ संपत्तेनम अठमस अंगस अंतगण दसानम पड़मस वगस दस अजेना पन्नता तम जहा गोयम समुद्र सागर गंभीरे चेवहो इति मियेया अयले कम के लेखलू अखोब पसे नये विन्नु जैनम भन्ते समनेनम जाओ संपत्तेनम अठमस अंगस अंतगण दसानम पड़मस वगस दस अजेना पन्नता। बराबर चल रही है? तम जहां गोयम समुद्र गंभीर आया नहीं उसमें, पूरा गाथा नहीं आई उसमें, ये तुम्हारा मिसिंग पार्ट है सारा। चलो पणमस न मन्ते अजनस अंतरसानम समनेनम जा संपत्तेनम के अठे पन्नते एवं खलु जंबु। नीचे का पहले का देखो ना उधर, एवं खलु जंबु तेनम कालेनम तेनम समयनम बार वही नामम नैरी होता द्वालस जोयनायामा नवजोयन विथिन्ना धनवई मई निम्बिया चामी गर पागारा नाना मणि पंचमन कविशिशक परिमंडिया सुरम्मा अलकापुरी संकासा पकिलिया पचखम देवलोक भूया पासाइया दरिशनिजा अभिरुवा पड़िरुवा तिसेनम भारवये नैरिये भैया उत्तर पुरिथ में दिशे भाये एथनम रेवये नामम पवये होता वन्नवो तथनम रेवये पवये नंदन वने उज्जाने होता वन्नवो सुरपिये नामम जखा यने होता पुराने सेनम एगेनम वनखंडेनम परिखित्ते आसुगुर पायवे तथनम बारवये नैरिये कन्हे नामो वासुदेवे राया परिवसई महिया हिमवंतराय वन्नवो सेनम तथ समुद्र विजय पामोखानम दसन्नम दसारानम बलदेव पामोखानम पंचनम महावीरानम पच्चुन्नम पामोखानम अदुठानम कुमरकोडीनम संभ पामोखानम सठिये दुदंत साहसिनम महासेन पामोखानम छप्पनये बलवग साहसिनम वीरसेन पामोखानम वेगविसाये वीरसाहसिनम उगसेन पामोखानम सोलसनम राय साहसेनम रूपिणी पामोखानम सोलसनम देवी साहसेनम अनगसेन पामोखानम अनेगानम गनिया साहसेनम अन्ने सिंच बहुनम विसर जाव सत्तवाहनम बारवये नैरी अद्ध भरहसय सम्मतसय अहे वच्चम जाव यरई तथनम बारवये नैरीये अंधगवन्ने नामम राया परिवसई मैया हेमंत वन्नवो तस्नम अंधग वन्ने सरन्नो धारिणी नामम देवी होता वन्नवो तैनम सा धारिणी देवी अन्नया कयायी तंसी तारिसगंसी सैनजंसी एवं जाओ महाबले सुमिन दंसन कहना जम्मम बालतनम कालावोय जोवने पाणि गहनम कंता पासाय भोगाय नवरो नवरम गोयमो नामेनम अठनम रायवर कन्नानम एक दिवसेनम पानीम गिन्नावेन्ति अठठावो दावो तेनम कालेनम तेनम समयनम अरहा अरिठनेमी अयगरे जाव्यरे चौविया देवा आगया कन्नेवी निगये तेनम से गोयमे कुमारे जहामेये तहा निगये तम्मम सोचा निसम्मम जम नवरम देवानो पिया अम्मा पियरो आपुच्छामि तिवानु पियानम अंते पवयामी एवं जहमेहे जावनगारे जाये इरियासमिये जाव इनमेव निगंतम पावेनम पुरवो कावो मियरही तयनम से गोये में अनगारे अन्नया कयाईम अरहो अरिठने में स ताहरुवानम थेरानम अंतिये सामाय माइयायम इकार संगायम अहिजई अहिजित्ता बहुहीम चौथ जाव अपानम भावे माने वियरही तैनम अरह अरिठनेमि अन्नया कयायि बारवयो नैरिवो नंदनवनावो उज्जानावो पडिनिखमै पडिनिखमिता भैया जनवय विहारम व्यरै तैनम से गोयमे अनगारे अन्नया कयायि जेनेव अरह अरिठनेमि तेनेव वागच्छै वागच्छिता अरहम अरिठनेमि तिखुतो अयाहिनम पयाहिनम करेयि करिता वंदयि नमनसै वंदिता नमनसिता एवमयासी इच्छामि नमन्ते तुभ्यम अभुनाय समाने मासियम भिक्कु पडिमम ओसंभजितानम यरितये एवं जा खंदवो तहा वारस भिक्कु पडिमावो फासी फासिता गुणरेणम वि तवकमम तव फासी निर्वशेषम जा खंदवो तहा चिंतई तहा अपुचई तहा थेरे सदिम सिद्धुंजम दुरोही मास्याय संल्यानाय बारसवास्याय पर्याय जाओ सिद्धे एवं खलु जम्बु सम्नेनम जाओ संपत्तेनम अठमस अंगस अंतरदसानम पडमस वगस पडमस अजनस एम अठे पन्नते एवं जहां गोयमो तहां सेसावि वन्ने पिया धारिणी माया समुद्रे सागरे गंभीरे थिमे अयले कपिले अखोबे पसरि विन्नु ये गवा पडमो वगो दस अजना पन्नता जम किच्ची में छाये मन दुकड़ाए मैं दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाये मानाये मायाये लोहाये सव कालियाये सौ में छोराये सव धम्मा एक मनाये जो में दिवसिया यारो को दस खमासनो पड़ी कमामी निंदामी गरियामी अपानम ओ सरामी ये पहला अध्याय आज है। पहले अध्याय में दस अध्याय दस अंदर चैप्टर है। सुधर्मा स्वामी विचरण करते हुए, सुधर्मा स्वामी कौन? भगवान महावीर के पांचवें गंतर है ना, भगवान महावीर का निर्वाण होने के बाद, भगवान महावीर मोक्ष में पधारने के बाद, जब वो पहली बार राजगृह नगरी में पधारे, एक 16 साल का जवान, उसका नाम था जम्बू कुमार। क्या नाम था? सब लोग जैसे दर्शन के लिए आए वैसे वो भी दर्शन के लिए आया। दर्शन के लिए आने के पहले उसकी 8 लड़कियों के साथ, कितने, सगाई हो गई थी। सगाई समझते हो ना, हम मजा लो थोड़ी देर, है ना, एंगेजमेंट हो गई थी, रिंग सेरेमनी हो गई थी। और उसके बाद वो दर्शन के लिए जब भगवान सुधर्मा स्वामी के पास आया, प्रवचन सुना, दर्शन करे, तो उनको लगा कि नहीं, अब शादी नहीं करनी, दीक्षा लेनी। क्या दीक्षा लेनी? अब दीक्षा लेने का नियम क्या है कि मां बाप की परमिशन के बिना दीक्षा होती नहीं है। तो सुधर्मा स्वामी को उसने कहा कि मैं आपके पास दीक्षा लेने के लिए मां बाप को पूछ करके आता हूं। सुधर्मा स्वामी ने कहा कि जहां सोम देवानो पिया मां परिबंधम करे हो, एक वाक्य बोलोगे क्या, जहां शुभम देवानो पिया मां परिबंधम करे ह। इसका मीनिंग ये होता है कि जिससे तुम्हारा मंगल हो वो करो, अपने आप को मंगल करने से रोको मत, अच्छा काम करने से स्वयं को रोकना मत। हम क्या करते हैं, अच्छा काम करने से स्वयं को रोकते हैं। थोड़ा सा उसको सेटिंग कर रहे हैं आवाज के ग्राउंड। कुछ तो भी गड़बड़ है, और बस बस ज्यादा मत, बस ठीक है ना। तो चला जम्बू कुमार माँ बाप के आज्ञा लेने के लिए, तो उद्यान में ठहरे थे सुधर्मा स्वामी। वापस जाना था नगरी में, तो रास्ते में पहले क्या होते थे, गेट होते थे, वेश कहते ना, वेश, जैसे मालीवाड़ा में वेश है ना, वैसे ही नगरी में क्या रहता था, गेटवे रहता था। वो 10 कदम दूर थे, 10 कदम दूर होने के पहले उन्होंने देखा कि जो गेट था उसके जो बड़ा पत्थर था शरा, वो नीचे गिर गई, वो नीचे गिर गई। तो जम्बू कुमार ने सोचा, यदि मैं 10 कदम आगे होता तो मेरा यही पर आयुष्य पूरा हो जाता, यानी समय का कोई भरोसा। मैंने सोचा कि माँ बाप को पूछ करके आऊंगा, फिर दीक्षा लूंगा, और यदि इसमें ही मेरा आयुष्य पूरा हो जाता तो मेरी साधना ऐसे ही रह जाती। वो वहीं से वापस लौट गए सुधर्मा स्वामी के पास, और सुधर्मा स्वामी को कहा, दीक्षा लेने के लिए तो माँ बाप की आज्ञा की जरूरत है, परमिशन की जरूरत है, लेकिन ब्रह्मचर्य को स्वीकार करने के लिए माँ बाप की आज्ञा की जरूरत नहीं है। तो मुझे आप जावत जीव के ब्रह्मचर्य के पचकान करा दो। तो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेकर के लौट कर आया। तब तक तो घर पर खबर पहुंच गई कि जम्बू कुमार ने दीक्षा लेने का निर्णय किया है और ब्रह्मचर्य के पचकान ले लिए। कोलाहल तो मचना ही था। जम्बू कुमार घर पर गया, माँ बाप को कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है। माँ बाप ने कहा कि तेरी 8 लड़कियों के साथ सगाई हो गई है, उनको हमने वचन दिया है, हमारे प्रेस्टीज पॉइंट है। ए बेटा, ए बच्चा, वो उसकी आदत है, थोड़ा सहन कर ले, है ना, एक आधा घंटा, है ना। भगवान महावीर को भी बहुत लोगों ने मारा, उन्होंने सहन किया, अपन भी थोड़ा क्या करेंगे, आधा घंटा सहन करेंगे, है ना। और कोई ज्यादा जोर से तो मारेगा नहीं तुझे, तेरे से छोटा है ना। तो माँ बाप ने कहा, क्या मान्यता, तेरे 8 लड़कियों के साथ शादी तय करी है, उनको तो छोड़कर नहीं जा सकता है, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी, शादी तुझे करनी पड़ेगी। बोले ठीक है, मैं शादी कर लूंगा, लेकिन शादी निभाऊंगा नहीं, शादी करूंगा लेकिन शादी निभाऊंगा नहीं, दीक्षा लूंगा। बोले बोले देख, उनकी परमिशन मिल गई, जिनके साथ तेरी शादी होती है उन्होंने यस कह दिया, तो तू दीक्षा ले सकता, हमारी कोई मना ही नहीं। शादी का कार्यक्रम हो गया, उन लड़कियों को पता चला कि जम्बू कुमार तो दीक्षा लेने वाला है, उनके माँ बाप ने कहा, बोले नहीं अब शादी जिनके साथ नहीं हुई उनके साथ ही शादी होगी। शादी होकर के आए पहली रात और सबने जम्बू कुमार के साथ बातचीत शुरू करी। तो जम्बू कुमार को पूछा कि तुम दीक्षा लेने वाले? बोले हाँ दीक्षा लेने वाला हूं। बोले पहले शादी का तय किया और तुम शादी पूरी करे बिना ही तुम दीक्षा लोगे तो तुम बोले मूर्ख हो। क्या हो? मूर्ख हो। और एक कहानी सुना दी। वो कहानी ऐसी थी कि किसान जो है अपने ससुराल गया, ससुराल गया तो वहां पर बढ़िया मालपुए का खीर का भोजन मीठा मीठा मीठा मीठा खिलाया, गन्ने का रस मिलाया, खेती बताई गन्ने की। उसने पूछा क्या? बोले गन्ने की खेती, बोले इसमें से रस आता है मीठा। बोले हमारे यहाँ तो गन्ना नहीं है, तो आप एक काम करो, बोले सारे गन्ने के बीज मुझे दे दो, मैं मेरे खेती में जाकर के गन्ना लगाऊंगा। अब गन्ने के लिए खेती अच्छी लगती है, पानी भरपूर लगता है, पानी वाटर बहुत लगता है। वहां से आया, इसके घर में इसके खेती में फसल थी, उसने फसल आने के पहले काट दी। लोगों ने कहा रे अभी मत काट, ये फसल ले ले फिर काटना। नहीं बोले गन्ना लगाना है मुझे। लोगों ने कहा अरे पहले फसल तो पूरी होने दे फिर कर। नहीं बोले अभी अभी करना है। उसने वो फसल काट ली, वो फसल गई हाथ से, गन्ना लगाया, पानी नहीं, गन्ना भी नहीं आया। तो बोले जैसे उस किसान का हुआ ना, बोले वैसा तुम्हारा होने वाला है। बोले तुमने पहले शादी करी और वो शादी पूरी काम किया नहीं और तुम दीक्षा लेने के लिए जा रहे हो, तो इधर से भी गए और उधर से भी गए। तो जम्बू कुमार ने दूसरी कहानी सुना दी उनको, बहुत बढ़िया कहानी सुना दी। बोले एक व्यक्ति व्यापार के लिए गया, चार पांच जने व्यापार के लिए चले, तो पहले निकले तो रस्ते में उनको एक लोहे की खदान मिली, लोहे की माइनस मिली, तो वहां उन्होंने अपनी गाड़ियों में लोहा भर लिया। उसके आगे गए तो चांदी की माइनस सिल्वर की खान मिली, तो कई लोगों ने वो लोहा निकाल दिया, सिल्वर भर लिया। आगे गए, उसमें एक जना था, उसने कहा नहीं मैंने बहुत दूर से उठा करके लाया, मैं तो कोई चेंज करने वाला नहीं हूं, मैं तो इसी को आगे लेके जाऊंगा। बाकी सबने सिल्वर भर लिया, उसने नहीं भरा। फिर आगे गए तो सोने की खदान लगी, तो उन्होंने सिल्वर छोड़ दिया, सोना भर लिया। उसको कहा रे अभी तो सोना है, लोहे को छोड़। बोले नहीं नहीं तुमको क्या लगता है मैंने इतने दूर से उठा करके लगाया, मैंने तुम्हारी फालतू थोड़ी जान दूंगा। वहां से आगे बढ़ा, सोने के बाद डायमंड के आया, बाकी लोगों ने सोना भी छोड़ दिया और डायमंड भर लिए। उसको कहा अरे डायमंड है? बोले नहीं मैंने बहुत दूर से उठा के लाया है। तो गांव में जब पहुंचेंगे तो मूर्ख किसको कहेंगे? जिसने लोहे को छोड़ा नहीं। बोले शादी लोहे जैसी है। क्या है? शादी लोहे जैसी है। अब मुझे डायमंड की खदान मिली है, तो उसमें मैं यदि डायमंड नहीं भरूंगा और लोहे को नहीं छोड़ूंगा तो मूर्ख कहलाऊंगा। वो पहली फेल, पार्टी चेंज। बोले मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, चलो। ऐसे रात भर जो है एक एक पत्नी ने एक एक कहानी सुनाई, और वो कहानी सुनने के बाद जम्बू कुमार ने कहानी से उत्तर दिया, और कहानी से उत्तर दिया तो रात भर में आठ के आठ पत्नियां जो है दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई एक रात में। मजेदार कहानी है ना जम्बू कुमार। तो जम्बू कुमार ने उस दिन जो है, जम्बू कुमार बड़ा सेठ था, उसके पिता ऋषभदेव, और आठ की शादी इतना दहेज आया हुआ, और उस समय का एक राजकुमार था 10 मिनट, 10 मिनट में छुट्टी, राजकुमार था, प्रभव नाम था। क्या नाम था उसका? प्रभव, बोलो। बिगड़ेल था। क्या था? बुरी सोबत में लगा हुआ था, उल्टे सुलटे काम करता था। बाप ने उसको हकाल दिया, हकाल दिया तो उसने क्या किया, अपने जैसे चोरों को, मवाली लोगों को इकट्ठा कर करके 500 लोगों की टोली बनाई। कितनी? हाँ, बड़ी गैंग बनाई। और काम क्या? बस डकैती डालना। तो प्रभु ने सोचा कि उसके पास एक मस्त विद्या थी, वो जहां भी चोरी करने जाता ना, उसके पास एक मंत्र था, वो मंत्र बोलता तो सारे लोग सो जाते थे, तो चोरी करना आसान हो जाता था। 500 लोगों को लेकर साथ में आए माल इकट्ठा करने के लिए, जम्बू कुमार के घर में प्रवेश कर लिया, बाकी सब सो गए। लेकिन धीरे धीरे जैसे घूमते गए घूमते गए घूमते गए, सारा सामान इकट्ठा किया और कहीं से आवाज आ रही थी कान में, तो देखा तो ये बीच में बैठा है जम्बू और आसपास में 8 पत्नियां कहानियां सुना रही है, वो भी कहानी सुनने में लग गया। अच्छी अच्छी कहानियां चल रही थी, कहानी सुनने में लग गया और कहानी सुनने में लग गया ना, उसके मन एक सवाल आया, अरे मैंने नींद लाने का प्रयोग किया ना, इसको नींद नहीं लगी, इसको नींद आनी चाहिए थी, नींद नहीं आई। और मुश्किल ये हो गई, नींद तो आई नहीं, लेकिन जब कहानियां पूरी हुई मैंने सारे चोर जाने लगे तो नीचे क्या लगा, थप चिपक गए, पहुंच नहीं। तो उसको लगा था तो उल्टा विद्या हो गया, इसने मुझे हमको थाम दिया है, कोई तो विद्या का प्रयोग किया है। तो जम्बू कुमार को उसने कहा कि क्या क्या, बोले मैंने कुछ नहीं किया, बोले मैंने कुछ नहीं किया, बोले हमारे हाथ पांव ने हमको खुला करो, बोले हो जाओ खुले, और खुले हो जाओ, बोले यहां से भी खुले हो जाओ, संसार से बाहर निकलो, बोले। तो वो भी कहानी सुन चुका था, उसने भी तय किया नहीं यार, जम्बू कुमार सबको छोड़ रहा है तो निश्चित रूप से इसको कुछ ना कुछ बड़ा मिल रहा है। आपके पास फटा हुआ कपड़ा हो और सामने नया कपड़ा है तो आप क्या करोगे, नहीं रहोगे। तो जम्बू कुमार को कुछ ना कुछ बढ़िया मिल रहा है तब ये छोड़ रहा है, तो मैं भी जम्बू कुमार के साथ दीक्षा लेता हूं। 500 को पूछा, 500 बोले जो तुम दीक्षा तो हम भी दीक्षा। और सुबह के समय में जम्बू कुमार 8 पत्नियों के साथ पिता माँ बाप के पास पहुंचा, बोले इनकी आज्ञा दीक्षा लेने के लिए, ये भी मेरे साथ दीक्षा ले रही है। अब माँ बाप को चक्कर आने बाकी रह गए, बोले कल तो शादी कराई नहीं, आज दीक्षा ले रहे हैं, 8 पत्नियां भी तैयार कर ली, बोले पक्का, बोले पक्का। तो बोले तुम भी दीक्षा लोगे, बोले हम भी दीक्षा लेंगे। तो बोले हम क्या करेंगे रह करके, हम भी तुम्हारे साथ आते हैं। अब वो 8 ही बेटियों ने अपने घर पर समाचार दिए माँ बाप को कि हम दीक्षा ले रहे, तुम दीक्षा ले रहे, कमाल हो गई, बोले कर तो कल शादी कराई ना, आज दीक्षा ले रहे। तो बोले हम भी तुम्हारे साथ दीक्षा लेते हैं। कितने हो गए, 27, कितने हो गए, 8 पत्नियां, 8 पत्नी के माँ बाप, जम्बू कुमार, जम्बू कुमार के माँ बाप, 27, और वे 500 प्रभु कुमार की टोली चोरों की, 527 लोग राजगृह नगरी में सुबह वरघोड़ा निकला मस्त बैठ। क्या मजा आ गई होगी ना, कि कल तक चोर थे हाँ साधु, कल शादी हुई आज दीक्षा, ऐसा तुम्हारी भी हो जाए, है ना। तो जम्बू कुमार ये कौन था, सुधर्मा स्वामी के शिष्य, उनको कहते हैं जम्बू कुमार, क्या कहते हैं, जम्बू कुमार, है ना, जम्बू स्वामी। उन्होंने दीक्षा ली 527 ने, और जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं कि भगवान ने क्या क्या फरमाया, भगवान ने क्या क्या फरमाया। तो उसमें भगवान ने अंतगढ़ सूत्र का वर्णन आज तुम्हारे पास आया, पहले अध्याय का, पहले अध्याय में 10 लोगों का जिक्र है, द्वारिका नगरी, द्वारिका नगरी जानते हो क्या, किसकी नगरी थी, श्री कृष्ण की, है ना, जिसको आज गिरनार पर्वत कहते हैं ना, कौन सा पर्वत, उस समय उसको कहते हैं रेवतक पर्वत कहते थे, क्या कहते थे, रेवतक पर्वत, क्या कहते थे, हाँ। तो वो द्वारिका के पास में था, आज गिरनार पर्वत है लेकिन द्वारिका नहीं है, वहां पर अरिष्ट नेमी का समोशरण धर्म सभा लगी हुई थी, और वहां पर अंधक कुरुष्णी राजा का बेटा, धारिणी का बेटा गौतम नाम उसका, उसके भी 8 लड़कियों के साथ शादी हुई थी। यहाँ सब शादियां बहुत होती है, है ना, बहुत शादियां होती है। इसका मीनिंग क्या पता है आपको, उसका मीनिंग क्या है, कि उस समय पुरुष कम थे नारियां ज्यादा थी, आज क्या है, पुरुष ज्यादा है नारियां कम है, है ना। और उसका कारण क्या है, मालूम है तेरे, नहीं ना, ये अबॉर्शन कराते हैं, क्या कराते हैं, जैसे किसी को पता चल गया कि मुझे बेटी होने वाली है तो उसका ऑपरेशन कर देते हैं। भयानक है नगर का, नगर जिले का रेशो भयानक है, नगर जिले का रेशो बहुत भयानक है। सबसे अच्छा रेशो कहाँ का है? केरल का। वहां 100 लड़कों के पीछे 118 लड़कियां हैं। वहां लड़कियां ज्यादा हैं, लड़के कम हैं, और यहाँ का रेशो बहुत भयंकर है। 100 लड़कों के पीछे 70 लड़कियां हैं। मारा मारी भरपूर है ना। हाँ, तो इसका मीनिंग समझो। उस समय पुरुष की संख्या कम थी, नारियों की संख्या ज्यादा थी। तो उसके भी 8-8 लड़कियों के साथ शादी हुई थी। इन अरिष्ट ने में पधारे गिरनार पर्वत पर। वहां पर सुप्रिय नाम का यक्षगान मंदिर था। वो गए, अरिष्ट निमि के दर्शन करे और गौतम मुनि मन में दीक्षा लेने का आया। और उसने माँ बाप को पूछ करके दीक्षा ली। उसके और 9 भाइयों ने भी दीक्षा ली। 10 जनों ने दीक्षा ली। कितने भाइयों ने? 10 बेटे थे। कितने बेटे थे? घर जाकर कहोगे क्या माँ बाप को कि क्या धारिणी रानी, क्या नाम है? अंधक वृष्णि राजा। बोलो, द्वारिका नगरी में उनके 10 बेटे, 10 बेटों ने दीक्षा ली। शादी करने के बाद जम्बू कुमार ने दीक्षा ली। पहले दिन शादी करी, दूसरे दिन दीक्षा ली अपनी 8 पत्नियों के साथ, अपने 8 सास ससुर के साथ, माँ बाप के साथ, प्रभु कुमार के साथ, उनके 500 चोरों के साथ, ऐसे टोटल 527। 10 कुमार अरिष्ट निमि के पास दीक्षा लेते, 527 ने दीक्षा ली सुधर्मा स्वामी के पास। किसके पास ली? और 10 ने किसके पास दीक्षा ली? अरिष्ट निमि के पास। दीक्षा लेने के बाद 12 साल तक दीक्षा पाली। कितने साल तक? 12 साल के दीक्षा में उन्होंने लंबी लंबी तपस्या करी। एक दो तपस्या का जिक्र, एक तपस्या का जिक्र आज करता हूं, दूसरी तपस्या का जिक्र बाद में करूंगा कल। पहले महीने में उपास के एकांतर, एकांतर समझते हो क्या? एक दिन उपास, दूसरे दिन पारणा, तीसरे दिन उपास। पहले महीने में ऐसा एक उपास का एकांतर का। दूसरे महीने में 2 उपास, बेला पारणा, बेला वापस, बेला वापस पारणा। ऐसे दूसरे महीने में बेला पारणा किया। तीसरे महीने में तेला पारणा, पारणा तेला। चौथे महीने में 4 उपास, पारणा 4 उपास। पांचवे महीने में, छठे महीने में, सातवें महीने में, आठवें महीने में, नौवे महीने में। बोल तो लो, कर नहीं सको तो 9 उपास, उपास पारने के बाद वापस 9 उपास। दसवें महीने में, 11वें महीने में, 12वें महीने में, 13वें महीने में, 14वें महीने में, 15वें महीने में, 16वें महीने में। इसको कहते गुण रत्न संवत्सर तप। क्या कहते इसको? बोलो, गुण रत्न संवत्सर तप। ऐसी तपस्या करी उन्होंने। साथ में और भी तपस्या करी, 12 साल की दीक्षा पाली। और शत्रुंजय तीर्थ है ना, अंतिम समय 12 साल के बाद वहां पहुंचे। और 1 महीने का संधारा, कितने महीने का? 1 महीने का संधारा लिया। और 1 महीने का संधारा करके मोक्ष में गए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस जन्म में तो अगले जन्म में अपने भी कहां जाना है? कहां जाना है? हाँ, मोक्ष के अलावा कोई ठिकाना, जाना कहाँ है? और मोक्ष में जाने के लिए क्या लेनी पड़ती है? हाँ, आज लोग के काले लोग के इन जन्म में, लोग अगले जन्म में दीक्षा लिए बिना थाने मोक्ष मिलने वालों नहीं। दीक्षा के बिना मोक्ष होता बोलो, दीक्षा के बिना मोक्ष होता, दीक्षा के बिना मोक्ष होता, ये गौतम कुमार राजकुमार होकर के भी उन्होंने दीक्षा ली। बाकी बात अपन कल करेंगे, है ना। ये क्या है, आपने आगम का अंतगण सूत्र क्या है, इसको परिशन पूर्व में इसकी आराधना कंपलसरी होती है ना। आपको सुबह समय नहीं होता है, सुबह हम 8:30 से 10 करते हैं और उसमें सब लोग आते हैं, आपको सुबह समय नहीं होता है, इसलिए पहली बार किया मैंने आपके लिए, मैं पहली बार कर रहा हूं। इसके पहले मैंने कभी दोपहर में बच्चों के लिए कार्यक्रम दिया नहीं, आप फर्स्ट हो ना, आपके लिए पहली बार किया है। तो कल भी आएंगे क्या? हाँ आएंगे ना, बस इसमें कहानी कहानी तुमको धीरे धीरे कहानी सुनाएंगे, चलेगा ना। हो गया समय अपना, 5 बज गई है। ओके, चलारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम मंगलम, चलारि लघुतम अरिहंता लघुतम सिद्धा लघुतम साहु लघुतम केवली पन्नतो धम्मो लघुतम, चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि, चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करणा और न शरणा कोई।